आनंद से समय तो दिखाई दे वादेव सभी भले लामा जैसे मिल लिया तब भले लामा सले बसले मना हमें निकल रहा।

कर करा मिलाउलिया जिला जल खैरुल अंबिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्लाह बतिया अल्ल